0: से पहले तो सिंदूर पड़ता है सिंदूर दान होता है उसके बाद जितनी महिलाएं होती है ना सुहागिन महिलाएं वो नाक से सिंदूर लगाती है दुल्हन को
1: हाँ
0: तो उसका यही है कि हमेशा इसका सुहाग इतना अमर रहे
1: अमर रहे
0: जी तो ये मेन रीजन है नाक से सिंदूर लगाने का
1: तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही और श्रोतागण आप सब रजिस्टर कराएं रजिस्ट्रेशन लिंक हम दर्पण फोरम में डाल देंगे जो भी महिलाएं शामिल होना
0: हमारा ऐसा होता है ना कि नाक से पहले तो सिंदूर पड़ता है सिंदूर दान होता है उसके बाद जितनी महिलाएं होती है ना सुहागिन महिलाएं वो नाक से सिंदूर लगाती है दुल्हन को
1: हाँ
0: तो उसका यही है कि हमेशा इसका सुहाग इतना अमर रहे
1: अमर रहे
0: जी तो ये मेन रीजन है नाक से सिंदूर लगाने का
1: तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही

0: मिनल सफी है जो कि हम लोग व्रत की चीजें अरेंज कराने के लिए या जो डिनर है जो नॉन व्रती हैं जो लोग डिनर करते हैं या बैंक्वेट हॉल का कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए एक नॉमिनल सा फी है
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप तारीख बता दीजिए जगह बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए कि कहाँ पहुँचना है
0: तो ये 14 सितंबर सोमवार को 5:30 बजे शाम से ये पूजा विशेषकर शाम को ही होती है
1: जी
0: शाम से लेकर रात तक है और ये ड्यूरल में मेडिसिन फंक्शन सेंटर एक बैंक्वेट हॉल है वहाँ पे किया जा रहा है सो दैट कि पूजा के बाद जो लोग नॉन व्रती जो लोग व्रत नहीं करें उनके लिए वहाँ पे खाने पीने और सभी कुछ का इंतजाम है
1: व्यवस्था रहे
0: और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पे डेकोरेशन हम लोग झूले लगाते हैं कि जो लोग हाँ व्रती हैं वो लोग अपना वहाँ फोटो वगैरह करा सके हस्बैंड वाइफ या अकेले या सहेलियों के साथ
1: फेस्टिवल का माहौल बिल्कुल क्रिएट करते बिल्कुल हैं। बहुत ही सुंदर श्रोताओं मैं तो जा रही हूँ और इजी भी हो जाएगा व्रत रहती हूँ तो मुझे सारी तैयारी खुद करनी पड़ती है आप लोगों ने आसान कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी हरियाली तीज के बारे में जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से नीता जी आपसे शुरू करते हैं
2: जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँ कि अगर तीज नहीं भी करते हैं तो आपको एक बार आके हमारा तीज देखना चाहिए कि हम कैसे साथ में करते हैं कितना अच्छा माहौल होता है कितनी पॉजिटिव माहौल होती है तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आएँ हमारे तीज वाले फेस्टिवल में थैंक यू
0: एज अ BJCA मेम्बर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस संस्था की पार्ट हूँ और हमारा एक यहाँ पे BJCA फैमिली है जो कि हर दिन बढ़ रहा है
1: जी
0: तो हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और देखें हम कैसे अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं तीज के त्यौहार में आए और जैसा नीता ने बताया छठ का महापर्व है तो ये बिहारी और नॉन बिहारी की बात नहीं है कोई भी आ सकता है हम लोग सबको हार्दिक दिल से वेलकम करते हैं
1: जी बहुत अच्छी बात और फिर से आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आगे भी जुड़े रहिएगा जो भी कार्यक्रम BJCA कर रहा है दर्पण स्टूडियो में आइए हमारे श्रोताओं को इन सब बातों से अवगत कराएं ताकि भारी संख्या में हम शामिल हो सकें और जुड़ सकें धन्यवाद नमस्कार

0: personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Therapin Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Therapin Radio.
1: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
2: श्रोताओं अब बारी आती है जन्माष्टमी की. हम बातचीत करेंगे जन्माष्टमी की. आपको पता ही है कि भारत में जो है नागपंचमी का पर्व जब शुरू होता है वो पहला पर्व होता है साल का और उसके बाद दिवाली तक जो है वो त्योहारों की झड़ी लग जाती है. चाहे वो सावन का त्यौहार हो, नागपंचमी हो, जगह जगह रुद्राभिषेक होते हैं. उसके अलावा जैसे सावन फिनिश होता है जन्माष्टमी की तैयारी हो जाती है. तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्माष्टमी की और बातचीत करेंगे ऋचा व्योम जी से, जो कि पहले भी आ चुकी हैं दर्पण स्टूडियो में. बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं, हरि कीर्तन, बहुत सुंदर बातें करती हैं और बहुत ही मधुर आवाज़ है. तो आइए सबसे पहले ऋचा जी का स्वागत करते हैं. सो ऋचा स्वागत करती है, ऋचा का बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी दर्पण रेडियो पर आपका.
3: हरे कृष्णा ऋचा जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे फिर से बात करके, आपसे और सुनील जी से वार्तालाप करने के लिए और मुझे वेलकम करने के लिए. थैंक यू सो मच.
2: आप स्टूडियो में रहती हैं तो हम हमेशा शुरुआत करते हैं हरि कीर्तन से, लेकिन आज हम फोन से जुड़े हैं तो इसलिए वो कीर्तन तो नहीं हो पाएगा आपको. हरे कृष्णा. तो ये इस बार जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो इस्कॉन ऑर्गेनाइज करता है हर साल. भव्य पर्व होता है जन्माष्टमी का, तो उस बारे में हमें बताइए हमारे श्रोताओं को कि सिडनी इस्कॉन ये पर्व जो है इस्कॉन वेस्ट सिडनी के साथ मनाया जा रहा है, तो कैसे जुड़ना हुआ आपका इस फेस्टिवल से और आप इवेंट एंकरिंग कर रही हैं, तो कैसे जुड़ना हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी?
3: हरे कृष्णा. मैं सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहती हूँ दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को अपना प्यार भरा नमस्कार और हरे कृष्णा के साथ. और आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, क्योंकि आज मुझे आपके प्रश्न से याद आया कि मैं 15-16 वर्षों से इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हरे कृष्णा कम्युनिटी एंड कल्चरल सेंटर की स्थापना करीब 8 वर्ष पूर्व हुई और ये भव्य मंदिर निर्माण के लिए हुई थी, इसलिए मैं तब से शुरू से ही पहले दिन से ही इस टीम से जुड़ी हुई हूँ.
2: बहुत अच्छी बात. तो जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा पहले बता देते हैं श्रोताओं को कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का आध्यात्मिक महत्व क्या है और आज के समय में कृष्ण का संदेश हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है.
3: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. पहले तो जन्माष्टमी श्री कृष्ण जो कि हमारे परम भगवान है, सर्व कारणों के कारण है, उनके धरती पे अवतरित होने का दिवस है जो कि भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. हर वर्ष विश्व के कोने कोने में ये बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है. और जहां तक कि आपका प्रश्न है कि इस भगवान के जन्म का आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन से भगवद गीता में ये बात करी थी कि वे 3 कारणों से अवतरित हुए थे. परित्राणाय साधुनाम, साधुओं अर्थात भक्तों की रक्षा के हेतु, विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों का नाश करने, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए वे धरती पे आए थे. अब आज के समय में कृष्ण भगवान का ये संदेश हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है ये तो हम देख ही सकते हैं. अभी नेपाल में इतनी बाढ़ आई है, कितना विनाश हुआ है, कितनी वॉर्स चल रही हैं, विश्व युद्ध चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम चारों तरफ विनाश ही विनाश देख रहे हैं. और भगवान ने भी यही कहा संदेश दिया है कि यह जो संसार है यह माया नगरी की तरह है दिस इज अ परमानेंट प्लेस ऑफ सॉरी दिस इज अ इम्परमानेंट प्लेस ऑफ मिजरी और हम सब जीव जो है इस माया नगरी को अपना परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस समझ लेते हैं ये हमारी भूल है क्योंकि यहाँ पे हर कदम पे खतरा है हर कदम पे विपदा है क्योंकि यह जगत दुखालयम अशाश्वतम कहलाता है इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी एंड इट इज ओनली अ टेम्पररी प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो हमारा परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस फिर क्या है ये प्रश्न उठता है और भगवान स्वयं भगवद गीता में ये इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उनका जो स्पिरिचुअल होम है वैकुंठ वैकुंठ ही हमारा परम धाम है हमारा अपना गोल होना चाहिए जीवन का वैकुंठ वो जगह है जहाँ कोई भी कुंठा या मिजरी नहीं होती तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति अगर चाहिए तो हमें हरि नाम की औषधि को ग्रहण करना चाहिए जो कि इस भव रोग की दवा है
2: जी और तो ये इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है ऋचा जी कि कृष्ण जन्म की जो कथाएं हम सुनते हैं जो भजन कीर्तन करते हैं नृत्य और नाटक के माध्यम से उन्हें जानते हैं तो क्या ये सब केवल उत्सव का हिस्सा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी है
3: आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहे हैं मुझे सारे श्रोताओं को ये बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के कि आपका प्रश्न इतना उत्तम है तो जैसे कि आपने कहा कृष्ण जन्म की कथा सुनना भजन कीर्तन देखना और सुनना नृत्य और नाटक ये सब लीलाओं भगवान लीलाओं को याद देखकर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो उनके जन्म के पावन दिवस में हम इस तरह के सारे जो एक्टिविटीज करते हैं जो सर्विसेज करते हैं भजन कीर्तन नृत्य नाटक कथा वो सब जो है हम भजन कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और इन सब चीजों से ना ही केवल हमारे पापों का नाश होता है बल्कि हमारी चेतना हमारी कॉन्शियसनेस भी प्योरिफाई होती है पवित्र होती जाती है और इस प्रकार हमारे मन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं
2: जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही तो अब हम लौटते हैं जन्माष्टमी पर्व पर तो इस साल क्या खास हो रहा है कहाँ मनाया जा रहा है ये पर्व और किस दिन मनाया जा रहा है समय वगैरह सो सब विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए
3: जी हाँ बिल्कुल तो बहुत ही जल्द अगले शनिवार 5 सितंबर 2026 5 सितंबर को जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाया जा रहा है
2: जी।
3: तो वेन्यू नोट करिए हार्वी लोई पवेलियन डोरन ड्राइव कासल हिल बहुत दूर नहीं है सेंट्रली लोकेटेड वेन्यू है यह हिल्स शोग्राउंड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है यहाँ एक बहुत बड़ी पार्किंग जो कि बिल्कुल फ्री है तो वो भी मौजूद है और हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल निःशुल्क है एज यूजुअल हमेशा ही हमारा प्रोग्राम उसमें कोई एंट्री फी नहीं होती और प्रोग्राम हमारा 11 बजे सुबह स्टार्ट होगा अगले शनिवार और रात मध्य रात्रि 12 बजे तक चलेगा बड़े ही धूमधाम से बड़े ही उत्साह से यह महामहोत्सव मनाया जाएगा
2: जी बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता जुड़ें और इसका लाभ उठाएं और इस पर्व को सेलिब्रेट करें तो ये भी पूछना चाहूँगी ऋचा जी कि जन्माष्टमी पूरे परिवार के साथ मनाने वाला पर्व है इस बार बच्चों के लिए क्या कोई ख़ास आकर्षण है हमारे बच्चों के लिए क्या ख़ास रहेगा इस साल
3: हमारे बच्चे तो हमारा असली खजाना है तो इन बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हमेशा बहुत भव्य इंतजाम करते हैं तो इस बार बच्चों के लिए कई आकर्षण हैं सबसे पहला आकर्षण छोटे बच्चों के लिए जंपिंग कासल और जैसा कि आप जानती हैं फूड स्टॉल्स तो हमेशा ही सबको आकर्षित करते हैं बच्चों को क्यों नहीं करेंगे तो फूड स्टॉल में बहुत सारे व्यंजन है फोटो बूथ है और फेस्टिवल से जुड़ा महोत्सव से जुड़ा दही हांडी ब्रेकिंग द बटर पॉट ये एक बहुत ही बड़ा मेन आकर्षण होता है हर साल ये हम इस बार दो बार कर रहे हैं एक शाम को 5 बजे और दूसरी बार 8:30 बजे रात में जिससे कि जो लोग देर से आए वो भी इसमें हिस्सा ले सकें और श्री कृष्ण को झूला झुलाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फेस्टिवल का जो कि बच्चों को बहुत लुभाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है और बुक स्टॉल गिफ्ट शॉप्स जिसमें बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स बच्चों के कपड़े बच्चों की बहुत ही अनेक प्रकार की किताबें जो उन्हें बहुत लुभाएंगी ये सब हमारे फेस्टिवल का हिस्सा है
2: बहुत सुंदर और जो भक्त स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण के पूजन में सहभागी बनना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं
3: जो लोग श्री राधा कृष्ण की पूजा में सहभागी होना चाहते हैं वो बहुत तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं जितना भी योगदान वो देंगे लक्ष्मी या धन राशि के के रूप में वो सब जाएगा नए टेंपल नए मंदिर के निर्माण कार्य में तो सबसे पहले भक्तों के लिए हवन का आयोजन है पूजा थालियां खरीद कर वो भगवान को स्वयं ही ऑफर कर सकते हैं हमारे पुजारी मेन ऑल्टर पे रेडी होंगे उन्हें उनकी सहायता करने के लिए और डोनेशन और कैश डोनेशन या एफपॉस डोनेशन से वो भगवान का अभिषेक भगवान की आरती को स्पॉन्सर भी कर और आरती प्रसादम श्रीमद् भागवतम के सेट को स्पॉन्सर करके वो एक पीकॉक मेटल लैम्प एज अ गिफ्ट रिसीव करेंगे और जहां तक अर्चना का सवाल है यशोदा दामोदर की भव्य मूर्ति श्री कृष्ण का झूला झुलाना और साथ में महामंत्र को गाना ये सबसे बड़ी सेवा हम सारे ऑडियंस से से करबद्ध विनती करते हैं कि जब वो आए तो महामंत्र के गाने में हम सबको कॉल एंड रिस्पॉन्स के साथ सहयोग दें वैष्णव भजन बहुत पॉपुलर वैष्णव भजन और कीर्तन होता है उसमें जब वो साथ देंगे तो उन्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी तो ये सारे आकर्षणों के साथ साथ हमारा नृत्य नाट्य भावपूर्ण नृत्य होगा ड्रामा होगा उसमें वो मनोरंजन भी ले सकते हैं और साथ में भक्ति के क्रेडिट पॉइंट्स भी अपने लिए ले सकते हैं तो ये सारे आकर्षण हैं
2: जी ये तो बहुत ही भव्य लग रहा है मुझे कार्यक्रम ऋचा जी जिस तरह से आप वर्णन किया और क्या हिंदी आपने बोली ऋचा जी बहुत दिनों बाद ये शब्द सुना मैंने कि करबद्ध प्रार्थना है तो मैं भी अपने श्रोताओं से करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि वो पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और जैसा आपने कहा कि नृत्य जो है वो आप मनोरंजन के तौर पे भी देख सकते हैं और ये भावपूर्ण है तो उस भाव का भी आप लाभ उठा सकते हैं तो ऋचा जी आपने मंदिर निर्माण की बात की तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया है और नए इस्कॉन मंदिर के बारे में बताइए कि कैसे कैसा चल रहा है मंदिर निर्माण कब तक ये समाप्त होगा और जो भी इसमें मदद करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं
3: तो भव्य मंदिर का निर्माण बहुत दूर नहीं हमारे विन्यार्ड जो कि मगराथ हिल में है 10 मिनट की ड्राइव फ्रॉम बॉक्स हिल वहां पे हो रहा है टेंपल का एड्रेस है 217 विंजर रोड विन्यार्ड और जो ये निर्माण कार्य है ये कुछ सालों से चल रहा है लेकिन अभी ऑलरेडी पहला और दूसरा फ्लोर पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही भव्य मंदिर 4 एकड़ के एरिया में हो रहा है तो भगवान की बहुत ही भव्य विशाल मूर्तियां स्थापित की जाएंगी तो ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है तो इसमें श्री श्री राधा गोविंद जी स्थापित होंगे और साथ में राम जी के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि श्री राम परिवार भी स्थापित होगा जिसमें श्री राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी भी होंगे और गौर निताय की बहुत भव्य मूर्तियां भी स्थापित होंगी
2: बहुत ही अच्छी बात और हम देखने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं कि कब ये निर्माण कार्य पूरा हो और हम देखें तो ये मंदिर जो है वो एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत पहुंचाने का एक माध्यम भी होगा इस मंदिर से कम्युनिटी को किस तरह से लाभ मिलने की उम्मीद है ऋचा जी
3: मंदिर से जैसा कि आपने कहा कि आज की पीढ़ियां ही नहीं आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां लाभ उठाएंगी पर जो मंदिर हम बनवा रहे हैं ये इतना भव्य है इसमें एक बहुत ही बड़ा मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सेंटर होगा जिससे कि यंग लोगों की शादियां संस्कार जितने भी संस्कार जो हम चाहते हैं कि हम इंडिया जाते करवाते वो सब अब हम इस भव्य मंदिर में आयोजित कर सकते हैं इसमें साथ ही भगवत गीता के क्लासेस और बच्चों के लिए गुरुकुल क्लासेस का आयोजन है जो कि ऑलरेडी हमारे 17 लोकल सेंटर्स में ऑलरेडी हो रहा है लेकिन जब मंदिर आ जाएगा तो एक सेंट्रलाइज्ड जगह होगी एक सेंट्रलाइज्ड स्थान होगा जहां सारे लोग इकट्ठे होके जप और बहुत सारी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक साथ सीखने की जगह पे मौजूद हो पाएंगे
2: और भोजन वगैरह भी की व्यवस्था होगी वहां
3: हां मंदिर में एक बहुत ही बड़ा गुरुकुल क्लास गेस्ट हाउस बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट कमर्शियल किचन और हम लोग ऑलरेडी एक फूड फॉर लाइफ ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करते हैं तो उसके लिए हमें बड़े से किचन की जरूरत पड़ती है और जो महामहोत्सव जो हम मनाते हैं वो अब जब मंदिर में आएंगे तो हमें एक बड़े कमर्शियल किचन की जरूरत होगी तो ये सारी चीजें उस ये सारी फैसिलिटीज उस नए भव्य मंदिर में होंगी
2: बहुत अच्छी बात ऋचा जी आपने बहुत कुछ बताया जन्माष्टमी के बारे में मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि इस कार्यक्रम में जाऊँ भाग लूँ और जो है वो डिवाइन जो आध्यात्मिकता और भावना की आप बात कर रहे हैं उसका आनंद उठाऊँ और फेस्टिविटी का भी मज़ा लूँ आपने कहा सुंदर भोजन है झूले हैं तो बच्चों को भी मज़ा आएगा तो ये बताइए कि वॉलंटियर्स को आपने बताया कि तरह तरह से वो सेवा कर सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं पार्किंग की सुविधा है वहाँ पे तो अंत में जाते जाते आप क्या हमारे श्रोताओं को कहना चाहेंगी कि इस्कॉन जन्माष्टमी में वो आएं और पधारें वो इस उत्सव से क्या लेकर जाएंगे केवल एक खूबसूरत दिन की याद या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा करेंगे
3: आपका सवाल फिर से बहुत ही सुंदर है लेकिन मैं माफी चाहूंगी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपसे बताना चाहती हूँ सब श्रोताओं को बताना चाहती हूँ जिससे कि वो महामहोत्सव में उपस्थित हो सके तो कैसे आप रजिस्टर करेंगे आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं तो रजिस्ट्रेशन हमारे मैं दर्पण रेडियो के ग्रुप में भी पोस्ट करूंगी इसका फ्लायर लेकिन अगर श्रोता बहुत सारे श्रोता जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं फेसबुक पेज पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू QR कोड क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटोरी तो हमारा फेसबुक पेज है HKCCC108 मैं फिर से बोलती हूँ HKCCC108 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है HKCCC_Sydney हमारी वेबसाइट है HKCCC.com.au तो प्लीज मेक श्योर कि आप रजिस्टर जरूर करें जिससे हमें पता लगे कि आप आ रहे हैं और वॉलंटियरिंग के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और हमारे पूज्य शिक्षा गुरु श्री विजय गोपीकेश के नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं उनका नंबर है प्लीज नोट करें 0410-076-030 बिजनेस मार्केटिंग के लिए भी एक नंबर मौजूद है जो लोग रियल एस्टेट रेस्टोरेंट ओनर्स लीगल फर्म्स मोटर डीलरशिप ज्वेलरी इंडियन शॉप सारीज या ग्रोसरी स्टोर्स के बिजनेस ओनर्स हैं तो हमारे बिजनेस स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं तो आप विपिन बिहारी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर नोट करें 0451-083-018
2: धन्यवाद ऋचा जी और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने विस्तार से बताया हमें जन्माष्टमी के बारे में दर्पण परिवार से आप सबको बहुत शुभकामनाएं कि ये कार्यक्रम सफल रहे और सभी लोग इससे जुड़ सकें आपका बहुत बहुत धन्यवाद
3: थैंक यू धन्यवाद जचा जी और आपका जो ये सवाल था जिसका जो प्रश्न जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई
2: जी जी।
3: वो मैं ये कहूंगी कि हर वो व्यक्ति जो पहली बार इस्कॉन में जन्माष्टमी महामहोत्सव में उपस्थित होगा वो क्या लेकर जाएगा क्या केवल एक खूबसूरत दिन की याद या श्री कृष्ण की भक्ति और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा तो मेरा इस प्रश्न का एक बहुत ही सुंदर उत्तर है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन आज मैं श्रोताओं को यह कहना चाहूंगी जैसा कि हम सब जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन तो पहली बार आने वाले जितने भी छोटे बच्चे होंगे ये जन्माष्टमी एक संस्कार का काम करेगी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का स्पिरिचुअल इंप्रेशन एक बहुत ही खूबसूरत याद से बहुत बहुत ऊंचा होता है तो वो बच्चों का संस्कार हो जाएगा और हर बड़े व्यक्ति के लिए मैं ये कहूंगी वेलकम टू आवर फैमिली यह वासुदेवम कुटुंबकम है जहां हम सब मिलकर भक्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं तो प्रहलाद महाराज का एक श्लोक मुझे याद आया जो कि आजकल की जो कलयुग की जनता है उस सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है तो वो मैं रिसाइट करके ये इंटरव्यू समाप्त करना चाहूंगी

0: मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व में मंगल व कल्याण हो, ईर्ष्यालु व दुर्जन लोग शांत रहें, समस्त जीव एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, हम सबका मन इंद्रियों से परे अगाध भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगकर शांत रहे, हमारी बुद्धि बिना किसी स्वार्थ या हेतु के निरंतर भगवान की भक्ति में मिलकर लीन रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
1: हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर बात आपने कही और हम सबको ये चरितार्थ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। हरे कृष्णा।
0: हरे कृष्णा। थैंक यू दर्पण रेडियो की टीम, आपको और सुनील जी को भी धन्यवाद और हरे कृष्णा।
1: श्रोताओं, ये थी बात जन्माष्टमी की। आपको ये बता दें कि हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है, जिसमें दही हांडी का भी महोत्सव होगा। ये हो रहा है सैटरडे 5 सितंबर को 6 बजे से 9 बजे तक। इसका वेन्यू है निरंकारी भवन 166 ग्लेन डेनिंग रोड, ग्लेन डेनिंग। ये भी फ्री इवेंट है और इवेंट के अट्रैक्शन जो है वो भजन होगा, प्रसाद होगा वहाँ पे, भोजन प्रसाद, राधा और कृष्ण की झांकी होगी, बच्चों के लिए कंपटीशन होंगे जो बेस्ट ड्रेस्ड में आएंगे, और गिफ्ट वगैरह भी बच्चों के लिए रहेंगे। तो इसमें भी बहुत अट्रैक्शन है। जन्माष्टमी का त्यौहार तो जो है वो बहुत ही भव्य होता ही है और जगह जगह मनाया जा रहा है सिडनी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सूचना थी हिंदू काउंसिल की। इसमें अगर आप संपर्क करना चाहें तो श्री से कॉन्टैक्ट कीजिए 0415-583-700। राहुल का फ़ोन नंबर है 0403-519-684 और स्पॉन्सरशिप के लिए जयदीप को कॉल करें 0450-772-126। सो ये जानकारी थी हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की।
2: Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413-385-976.
3: दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413-385-976।

0: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
1: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें आनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश
3: श्रोताओं त्योहारों की बातें हो गई जन्माष्टमी की बात हो गई अब चलिए वापस लौटते हैं शैलेंद्र जी की ओर तो शैलेंद्र जी की कुछ खास बातें और आपको बताना चाहूँगी शैलेंद्र जी ने जो गीत लिखा था मेरा जूता है जापानी इसने इस गीत ने देश की बदलती सोच को और आम आदमी के आत्मविश्वास को आवाज़ दी गीत सरल था लेकिन संदेश बहुत बड़ा वो लोक भाषा और बोलचाल के शब्दों का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल करते थे उनके गीत पढ़ने से ज़्यादा सुनने पर दिल में उतरते थे कहते हैं शैलेंद्र और सलिल चौधरी की जोड़ी ने भी कई यादगार गीत दिए जैसे दो बीघा जमीन का धरती कहे पुकार के सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है ऐसे गीतों के माध्यम से उन्होंने मनोरंजन के साथ जीवन का दर्शन भी बड़ी सहजता से रख दिया वो अपने गीतों में साहित्य और सिनेमा के बीच पुल बनाना चाहते थे इसलिए उनके गीत कहानी का हिस्सा लगते हैं सिर्फ गीत नहीं उनकी लेखनी में गरीब और साधारण इंसान के प्रति गहरी संवेदना थी शायद यही कारण है कि उनके गीत आम लोगों से इतनी गहराई से जुड़ गए शैलेंद्र जी की एक बड़ी खूबी ये थी कि वो बड़े दर्शन को छोटे और आसान शब्दों में कह देते थे तो श्रोताओं इस तरह से शैलेंद्र जी जो है वो अमर हो गए गीतों के माध्यम से वो चले गए इस दुनिया से लेकिन शब्द उनके आज भी हमारे साथ हैं शायद यही एक सच्चे गीतकार की सबसे बड़ी पहचान है इंसान चला जाता है गीत नहीं आइए सुनते हैं उनके कुछ और गीत

سر پہ لال ٹوپی روسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی. کتنی گہری بات اور کتنی سچ بات کہی شیلندر جی نے. ایک ہی گیت ان کے اتنے میننگ فل اور دل کو چھونے والے. شروتاؤں آپ کے کامنٹس پڑھنا چاہوں گے. آپ نے بہت اچھے اچھے کامنٹس بھیجے ہیں کاریکرم کی شروعات میں. راجیش پانڈے جی کو اور یتن جی کو بھجن بہت پسند آیا. چیتن شاہ جی لکھتے ہیں لیٹس پرے فار دا سیفٹی آف دا فیملی فرام دا سڈنی سبرب آف چیری بروک ٹریولنگ ود اے گروپ آف اباؤٹ 15 آسٹریلین فرینڈس ٹو دا ہندو سیکرڈ سائٹ آف ماؤنٹ کیلاش ان نیپال. راجیو نگم جی لکھتے ہیں نمسکار جی نائس وی آر ہیئرنگ شیلنز سانگ گریٹ. لیلا تیوانی جی لکھتی ہیں ریچا جی کاریکرم بہت ہی شاندار چل رہا ہے. دھنیواد لیلا جی. प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं आज गीतकार शैलेंद्र की जयंती के अवसर पर ऋचा जी ने सुंदर कार्यक्रम की रचना की. कार्यक्रम के आरंभ में ही शैलेंद्र जी के बारे में कितनी खूबसूरत जानकारी उनके शोध के स्तर को दर्शाती है. शैलेंद्र जी ने भारतीय सिनेमा में कई कालजयी गीत दिए हैं, उनमें से दो तो हम सुन ही चुके हैं. धन्यवाद प्रदीप जी कमेंट्स के लिए. लीला तेवानी जी जो हैं एक कजरी उन्होंने पोस्ट की है बहुत अच्छी सी. सावन की भीगी बयार कजरी की मीठी तान मन के सुने आंगन में जैसे हो नई नवेली उड़ान. दादुर मोर पपिहरा बोले कोयलिया कूके अमराई सखियां मिलकर झूले गाएं प्रकृति ने ली है अंगड़ाई. तो ये बहुत ही सुंदर कजरी. धन्यवाद लीला जी. प्रदीप कुमार जी लिखते हैं बहुत अच्छी जानकारी. लीला तिवानी लिखती हैं हरतालिका की बहुत अच्छी जानकारी. शैलजा जी लिखती हैं शैलेंद्र जी के जीवन की झलकियां इस अमर कवि को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आभार. जसप्रीत चोपड़ा जी लिखते हैं ग्रेट इन्फॉर्मेशन ऑन बिहार कल्चर एंड कस्टम्स ब्यूटिफुल कॉन्ग्रेचुलेशन टू BJCA. शैलजा जी फिर लिखती हैं नीता जी व श्वेता जी का प्रयास भारतीय परंपराओं व संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से प्रशंसनीय है. यही है समाज के दिग्गज जो भारत की दिव्य ज्योति के संरक्षण हैं. ऋचा जी का स्वागत. उनके आध्यात्मिक व धार्मिक विचार उनके व्यक्तित्व का परिचायक व अनुकरणीय है. कृपया कासल हिल का पूरा पता इस ग्रुप में लिख दीजिए. जी जरूर भेजेंगे हम. मंदिर का भव्य रूप व इसकी असीमित संभावनाएं भारत ही नहीं देश भर के लिए नव जागृति का संदेश है. इस्कॉन के हम आजीवन आभारी हैं. धन्यवाद शैलजा जी. जसप्रीत चोपड़ा जी लिखते हैं प्लीज़ ऐड द डिटेल्स ऑफ इस्कॉन. वो हमने भेज दिया है ग्रुप में, आप सारी जानकारी ले सकते हैं. सुरेश जी लिखते हैं थैंक यू फॉर अनाउंसिंग. जो हिंदू काउंसिल का हमने अनाउंस किया है वो भी जानकारी ग्रुप में है. तो सभी जानकारी ऋचा व्यूम ने भेज दी है जन्माष्टमी से संबंधित. आप सब भारी संख्या में इन कार्यक्रमों का लाभ उठाएं और आनंद लें. शैलजा जी लिखती हैं दिल है हिंदुस्तानी विश्व के सदाबहार गीतों में से एक है जिसका जादू 75 वर्षों के बाद भी बरकरार है. बिल्कुल सही बात शैलजा जी. और जितना मैं पढ़ रही थी शैलेंद्र जी के बारे में और उनके गीतों को सुन रही थी उनकी सूझबूझ और उनके सरल शब्दों का जो है ना और भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता जा रहा है. तो ये 75 वर्ष क्या, मुझे लगता है ये हज़ारों साल तक ये गीत जो हैं वो ऐसे ही जीवित रहेंगे और उन्हें हम पसंद करते रहेंगे. तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम श्रोतागण आप लोगों को पसंद आया होगा. आगे भी आप ऐसे ही कमेंट देते रहिए जिससे हमें सुविधा होती है कि हम और बेहतर प्रयास करके बेहतर प्रोग्राम आपके लिए ला सकें. धन्यवाद. नमस्कार.

0: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
1: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au

नगरी संभालो ओ मरी मैया आज इथे सारे चपेंद्या निकनैया ए लूट ही लेंगे माखन की कगरिया आज बच न पाए कोई राह डगरिया